जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन अस्थान दियां हाजरियां भरते हुए गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजों बेअंत माया अरदास कराई है सतगुर सच्चे पातशाह जी सतगुर जी आप नाम जानी जान हो सतगुर जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे यरुकता दे नाम दे दात आसा मनसा पूर्ण करनिया हर मैदान फतेह करनी कालराज कनी यात्रा

सेना बल्ले हारे सचिया सेना सेना बल्ले हारे तो दिया गे यारे दास है मारी वाहिगुरु तो दिया गे यारे।

के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र भवने के सर्वत्र जैसे के सर्वत्र जैसे के सर्वराज के सर्वसाज के सर्वत्र दीने के सर्व

आगे लिखा रिखे दास का तो प्रसाद चौपाई प्रणव आदि कंकारा जल थल मयल कियो पसारा आद प्रग अवनाशी लोग चतर ज्योत प्रकाशे हस्त कीट के भी समाना राव रंग जय सरजाना अदव अलख पुरख अवगामी सब घट घट के अंतर जामी अलख रूप अक्षय अनभेखा राग रंग जह रूप न रेखा वरन चहन सब हुते न्यारा आद पुरख अवगत अदव अविकारा वरन चहन जय जातना पाता सत्र मित्र जय तातना माता सबते दूर सबंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनाहद पानी चरण शरण जय बसत भवानी ब्रह्मा विषण अंत नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो कोट इंद्र उपेंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए लोग चतर दत खेल रचायो बाहर आप ही बीच मिलायो दानव देव फनिंद अपारा गंधर्व जच रचय सुबचारा भूत भवेक भवान कहानी घट घट के पट पट की जानी तात्मा जह जात न पाता एक रंग का हूँ नहीं राता सर्व ज्योत के बीच समाना सब हूँ सर्व ठौर पहचाना काल रहतन काल स्वरूपा अलख पुरख अवगत अवधूता जात पात जह चहन न बरना अवगत देव अक्षय अनभरमा सबको काल समन को करता रोग सो दो कन को हरता एक चेत जह

कात हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कात हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो, कात हूँ भिखारी हो के मांगत फिरत भी कहूँ, माँ दान हो के मांगो धन देत हो, कहूँ माँ राजन को दीजत अनंत दान, कहूँ माँ राजन ते छीन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास बेपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ जज गंधर्व रक कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो, कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपयो, कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो, कहूँ कोप काब होय के पुराण को पढ़त मत, कात हूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास बेपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद बीसी, कहूँ इंद्र पद भी छिपाए छीन लेत हो, कात हूँ विचार अविचारत को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मिडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, कहूँ धर्म धामी कहूँ सरब ठार गामी, कहूँ जति कहूँ काम कहूँ देत कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ योग साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे कोई डंडी होय पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो, कात हूँ सिपाही हो के सादत सिलाहन का, कहूँ छत्री हो के अरे मारत मारत हो, कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कात हूँ पयुक हो के पीवत पीवावत हो, कात हूँ मयू कहूँ मद पान हो, कहूँ माँ सुर हो के मारत मवासन को, कहूँ माँ देव देवतान के समान हो, कहूँ माँ दीन कहूँ द्रव के अधीन, कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो, कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुतत कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पौन हरि कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ योगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला धरे छैल भारी, कहूँ छक्केवारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचया कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद वाणी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ वेद के बजैया कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शुद्धता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो, निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूपो के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग शोक के मिटैया की दो मानी महामान हो, विद्या के विचार हो के अद्वैत अवतार हो के शुद्धता की सूरतों की शुद्धता की शान हो, जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वाला सी जगत हो, पूरन प्रताप कहूँ इकाती को जाप, कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते टिकत हो, कहूँ बर देत कहूँ छाले सिंह छिनाय ले, सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो, तो प्रसाद समये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिर घर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा देख संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे प्राण पति के, श्री भगवान की

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। भारी भुजान के भूप बलि वेदनावत शीस न जात बिचारे। हेते भय तो कहाँ भय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे। जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गुड़ गज

श्रीपाद श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ धन दया दम दाम संयम नेम अनेक विशेष वेद पुराण।

श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सुध सुपाह दुरंत दुबास साध सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरिन मरोर मवासन माते मतंगन मन मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आरम चार सार की धार बछैया।

नायक जाचका अनेक सो एक दवैया दानव दे फने निशाचर भूत भवे के भवाने जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुण्य प्रतापन बार जा धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फेरे जाग शत्रु सब अवलोक छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधे भुजंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान एक स्वयंवर साज परेंगे ब्रह्म सर्वशंत अच्छी पदार्थ फसे जम फांस परेंगे जे नारे सी पत के प्रास

हाथ फिरिए लिए साथ समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बेखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैसे बितायो साचे कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरयो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लखियो रवाची दिशा में काहू पछाह कोसी से निभायो को भूतान को पूजत है बस को उम्रतान को पूजन धायो पूरे क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो तो

अनभेज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक पितार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुख चार भगत बेअंत अनभेद अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मंड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फणिंद्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विष्ण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोम का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमरित बखान कऊ कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहूँ योग भेष उदास कहूँ निवली करम करंत कहूँ पौन हार दुरंत कहूँ तीर दान अपार कहूँ जग करम उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कहूँ न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमरित रीत कहूँ भेद शिव विपरीत कई देद वेद फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ करत जल में जाप कहूँ सत तन प्रताप कहूँ बाद बनह करंत कहूँ ताप तनह सहंत कहूँ ग्रस्त धर्म अपार कहूँ राज रीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहूँ सेग ब्रह्म रट स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई सेग नाम चरंत बैरा कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नहफल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भ्रम विचार तब साल लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि इहां हरि उहां हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदोख हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जल सुई थल सुई नदी सुई नद सुई वृक्ष सुई पत सुई छित सुई ऊर्ध सुई भजस्तुअंग भजस्तुअंग रटस्तुअंग ठटस्तुअंग जिमी तुई जमा तुई मकी तुई मका तुही अभू तुही अभय तुई अछू तुई अछ तुही जतस्तुई व्रतस्तुही गतस्तुही मतस्तुही।

खूक मल हरि का जगत हिपूतारी के दुआ मसान वास करो ही करत है। घुकुमट वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन साधे ही मरत है। बिंद के सदैया दा हीर की पटैया देत बंदरा सदी उपाय न गई फिरत है। अंगना अधीन का क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी छेद छौना सब दुगादारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भचैया दान लोभ के तजैया दे तो कवन के जैया ब्रेक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया दाए पंछी की बटैया दे बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के पसैयता है भूजरी के जैया के नब के उड़ैया सोच रैया के बखानिया। फल के पछैयता है बांदरी के जैया कहे आधे से फिरैया दे दो भूत के पछानिया। जल के तरैया को गंगे ऋषि का हाथ जग आखे भचैया सो चकोर सम्मानिया। सूरज सिवैयाता है काल की बटाई दे तो चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिया। नारायण कच्छ मच्छ ते दुआ कहत सब काल नाव काल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन चारी रिखी के नाम के महत लहियत है। माधव भवर और कन्हैया नाम कंस को बतैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत ना गुणता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है। जोगी चट्टा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काल भूख प्या देह पै सहत है। निवरी गरम जल हो पावक पावन हो मधुक मोहिक पाए ठंडे न बहत है। मानो फनी देव दानो न पावे फिर भेद अकतेव नेत नेत कह कहत है। नाचत फेरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करो ही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोनारा जा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सीतम से समस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा बशन के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समून के होए होए बिताए है। बोंदी मदार के ते अंसनी कुमार के ते अंसावतार के ते कालबद भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गने न पर देते भूमि ते हो गए फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देत बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पौ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भू अंत भूम में मिलत है। सिद्ध दे करे अनेक तोपची कपट भेष पोस्ती अनेक दानी बाबत शीश को कहा भयो मल जो जो कहा भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सोतन डंडा अष्टांग तीस को कहा भयो रोगी जब डारे रहे उर्दो को मनते न मुड़ना रायो आज इसको कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जाके दीस को सीछ पट कत जाके कान में खजूरा दसे मूड छंड कत मित्र पुत्रों के शोक सो आँख को चरे या फल फूल को बछया सदा मन को भ्रमया और दूसरों ना भोग सो कहा भयो भेड़ जो घसत से वृक्षण सो माटी को पछैया बोल पूछ लीजे जोग सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे फिटे पर लोग सो नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत ब्रेछ फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुए एक ठौर बात करे कागल चीर देश वेद विचरत है। ज्ञान के भीन मादान में न हुजलीन भावना यकीन देन कैसे के दरत है।
जैसे एक स्वांगी कहो जो गया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बन का दिखावई कहो पौन हरि कहो बैठे लाए तारी कहो लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहो ब्रह्मचारी कहो हाथ पे लगावे वारी कहो दंडधारी होके लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर नाचते नाचन सो ज्ञान के भीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचरा गदहान एकदा पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो काशी बीची ची चोर ठाकुर ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बुढ़िया जड़ गंग दार डार डार फाटक मार मार डार ही डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना भीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पे पाइए ताप ना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जो पे पाइए अजाव देव पूजना सदीव तू ही उचरत है नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाइए तन लकांच वंजी डोलबो करत है आग में जरते गदरांड की परत कर पताल के बासी की भुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान बो हिंदू तुरको राव जी वाम सभी मानस की जात सब के पहचान बो करता करीम सोई राजक रही मोई दूसरों ना भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही सेव सब ही को गुरु देव एक ही स्वरूप सब के जो जान बो देहु राम सी सोई पूजा निवाजो ही मान सब एक पैने को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नारे के काने के दे के बान खाक बाद आता सो आप को रलाव है अल्लाह भेग सोई पुराना कुरान एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आग ते कन का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरे ते धूर के कने का पूरे धूर ही समाएंगे जैसे एक नते तरंग को डूबते पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे केते काछ माज के दे उनको करत भच्छ केते अच्छ वच्छ हुए सब पच्छ ओट जाएंगे केते नब बीज अच पाज को करेंगे भच्छ केतक प्रतज होए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे तेज हुआ तेज में अतेज जैसे तेज लीता ही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है केते गंगवासी के दे मदीना मक्का निवासी के तक उदासे के भ्रमाई फिरत है करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुखो भरत है ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के भीन जग जा रही मरत है सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हरे चौचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व जाए हरे किन्नर सा पज हरे पंडित तपत हरे तापसी तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पुत्रंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग ना भेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सत्यता बद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जाने जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह कहा वह कहा कब खानो कह मैं न आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाये उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगादे अभय आदे अद्वै अविनाशी परे अंग परापरम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगादंग स्वरूपे अखंडत प्रतावाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सा नेहंग सा नाते उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना क्षोभंग अभूतंग अभेखंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग ना सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग
ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आदत वै अजोहंग।

कहूं अंग के रंग के संग देके, कहूं जंग के रंग पेखे, कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने, कहूं धर्म के कर्म के भरम माने, कहूं चार चेष्टा, कहूं चित्र रूपं, कहूं परम प्रज्ञा, कहूं सर्वभूपं, कहूं ने ग्रहं, कहूं देह दोखं, कहूं खदी रोग के सोग शोकं, कहूं देव विद्या, कहूं दैत पानी, कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी, कहूं राजसी सात गीताम सी हो, कहूं जोग विद्या धरे ताप सी हो, कहूं रोग हराता, कहूं जोग जुगतं, कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं, कहूं देव कन्या, कहूं दानवी हो, कहूं जच विद्या धरे मानवी हो, कहूं राजसी हो, कहूं राज कन्या, कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट कन्या, कहूं वेद विद्या, कहूं बेवानी, कहूं कोप की कार कथा कहानी, कहूं उद्र सारंग, कहूं भद्र रूपं, कहूं मद्रवाणी, कहूं छद्र स्वरूपं, कहूं वेद विद्या, कहूं काव्य रूपं, कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं, कहूं परम पुराण को पार पावे, कहूं वेद पुराण के गीत गावे, कहूं शोध सेकं, कहूं ब्रह्म धर्मं, कहूं वृद्धावस्था, कहूं बाल कर्मं, कहूं ज्वाल स्वरूपं, जरा रह देहं, कहूं ने देहं, कहूं त्याग गृहं, कहूं जोग भोगं, कहूं रोग रागं, कहूं रोग हरता, कहूं भोग त्यागं, कहूं राज साजं, कहूं राज रीतं, कहूं पूरण प्रज्ञा, कहूं परम प्रीतं, कहूं आरबी तोर की पारसी हो, कहूं पहल भी पस्त भी संस्कृति हो, कहूं देश भाग्या, कहूं देववाणी, कहूं राज विद्या, कहूं राजधानी, कहूं मंत्र विद्या, कहूं तंत्र सारं, कहूं जंत्र रीतं, कहूं शस्त्र धारं, कहूं होम पूजा, कहूं देव अर्चा, कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा, कहूं बीन विद्या, कहूं गान गीतं, कहूं मलेज भाग्या, कहूं वेद रीतं, कहूं नृत्य विद्या, कहूं नागवाणी, कहूं गारू गुण कथे कहानी, कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो, कहूं पीर विद्या भूतंग प्रभा हो, कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी, कहूं राज साजंग राजाधिकारी, नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, छेदी अक्षय आदत वै विधाता, ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे, नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते, तो प्रसाद पादली छंद अभ्यक्ते जन भव प्रकाश अच्छा सुरुवत वै अनाथ अन तोट तेजन खोट भंडार दाता दुरंग सर्वन प्रकार अनभूत तेजन शजगार करता सदी हरता सनाद आसन डोलन भूत कर्म दाता दयालन भूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योधमान जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय ने गे ने चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेक जय जन्म जात नहीं भरम भेक जय करम भरम नहीं जात पार नहीं ने गे ने पितृ मात जय नाम थाम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सार जय त्रास आवास नहीं दे ना जय आद अंत नहीं रूप राज जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कटे हो ना अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलख रूप कथत कते जय अलख रूप आसन अडोल जय मितेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत के कलव जो साधन दुरंत तन तीन तन शीत घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तदप पावत न पार कई उर्ध्वा देशन भ्रमंत कई उर्ध्वमद पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उत्तरंत वेद कई कोप काव कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत गोट मृत को आहार कई करत साग पे पत्र भक्ष नहीं तदप देव होत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग आद करम कहूं अगन होत्र कहूं तीर धर्म कई देश देश भागा रटन कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायक ताल पायत न पार
कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता पायत न पार कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उतरा सो करम निवली आद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मक्खो बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृत चार कहूं करत जज गंधर्व गान कहूं धूप देव कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गेहवाद कई भ्रम दे देसन उदार कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पक प्रजा नहीं तदर तास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदब देष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर

जय जम्पो हो जुगण जू भवंग जय भय कंपो मेर पयाल भुवंग तप तप तापस धर्म जलेर थलंग धन उतरत इंद्र कुमेर बलंग अन खेद सरुग भेद अभियंग अन खंड अतुल छेद अछियंग अन काल अपाल दियाल अस्वंग जय ठटियंग मेर अकाल भुवंग अन खंड मंड प्रचंग नरंग जय रचंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग शरम बकीन मका जय रागना रूपना रेग रुखंग जय तापना सापना शोक सुखंग जय रोगना शोकना भोग भोंग जय खेदना भेदना छेद छयंग जय जातना पातना मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रंगना रेख रुकंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैखना दागना दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नौ खंड सचियो रस तामस तेज तेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो श्रिय सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्रिय जाच गंद्र फणिंद भुजंग रच देव देव भवेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किय देव देव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातना पातना जो जुतंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना शोकना भोग भोंग जय जम्पय किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाय किय गण किन्नर जय भुजंग दिए गज पाज रथाधिक पांत गणंग भव भूत भविक भवान तुअंग जय अंडज सेत जय रजंग रज भूम काल पताल चलंग रज पाव पवन प्रचंड बलि बन जास की ओ फल फूल कली भू मेर काश निवास सितंग रज रोज काद चंद्र वृतंग दुध चंद निशा दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक छत्र चार रचे नर गंधर्व देव देव सचे अन धूत भूत छूत मतंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद भेद छेद नरंग जय चार छत्र चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेग रुखंग जय शोक ना भोग ना जोग जुगंग भो भंजन गंजन आशिरंग जय बंदन देव देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पारना पावत पूर्मतंग अन खंड सरूपा गण प्रभा जय जम्पद बेपुरान सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुध सिंध अधो मुख ताप जपै कई कल्पन लो तब ताप करे नय नय कृपा निज पान पर जय भूकर धर्म सब तज है क्षेत्र कृपा निज को जप है तेव या भव सागर को तर भव भूल ना दे पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोल प्रीति वेद उच्चारण सा सुति जो वारस के चथ के रस है ते भूल ना काल फदा फस है तो प्रसाद नाराज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिया भूत भूत है सजा गंज गंज मानिया देव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त स्मृत दा सदयु सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदयु सिद्ध वृत दा अनूप रूप स्वरूप अछेद तेज वाणी है सदयु सिद्ध सद्धता प्रताप पत्र जानिए ना राग रंग रूप है ना रोग राग रेक है दोग दाग दग है भूता भरम भेक है ना तात मात जात है ना पाचन भरण है अधेग सेग भेग सदयु विश्व भरण है विश्वम्बर वैश्वनाथ अभिषेक विश्व भरण है जमी जमान के विख सदयु करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेगना ज्ञानी है सदयु सर्व ठौर में अभिषेक आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताई है अगंजा देव हो कह सो कह सपाई है जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है न घाट है न भाड़ है न घाट बाड़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानी है मकीन मकान प्रमाण तेज मानी है न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैक है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साग है न संक है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है ना चोर है ना शाह है ना शाह को कुमार है ना ने है ना गे है ना दे को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छल को मिलाओ है ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को स्वरूप है ना राग है ना रंग है ना रेख है ना रूप है
ना जंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को बनाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छाया को मिलाओ है ना राग है ना रंग है ना रूप है ना रेख है ना कर्म है ना धर्म है अजन्म है अभेक है ना तात है ना मात है अखाल खंड रूप है छेद है अभेद है ना रंग है ना भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है पाल है ख्याल है अखंड है ना रोग है ना शोक है ना भेद है ना भंड है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है ना सीत है ना सोच है ना घ्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैग है ना भय है ना दुई है ना द्रोह है ना काल है ना बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है भंज है भर्म है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत भेक है मलिया रूप राग रंग है ना द्वैक है ना भेक है ना काम क्रोध कर्म है ना जात है ना पात है ना चित्र चैन वरण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूम अभिज है सदा छेद तेज मानिए ना आद है ना व्याद है अगाध रूप लेखिए अधोख अदाग दग है अक्षय प्रताप एकिए ना कर्म है ना भरम है ना धर्म को प्रभाव है ना जंत्र है ना तंत्र है ना मंत्र को रलाव है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र को स्वरूप है भंग है नंग है अगंज सी विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ मोह कार है ना आद है ना गाद है ना ब्याद को विचार है ना रंग राग रूप है ना रूप रेग रार है ना हाव है ना भाव है ना दाव को प्रकार है गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सितास्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस आजे बड़े तपस्पति विशेखिया बेंद बेंद बेंद को करंत पाठ पेखिया अगाध आ देव किया नाद मादम जा मानी है ना जात पात्र मंत्र सत्र सत्र सने जानी है सदैव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रो देह के अनंत भांत सोध है तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप राग ना रेख रंग ना जन्म वरण भीन आद नाद अगाध वृक्ष धर्म करण प्रवीण जंत्र मंत्र ना तंत्र जाको आद वृग अपार हाथ कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात ना ताज जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर बिखे रमियो जय।

जज के नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकार ही सी सकरो मुगचार सर्व सपत पतार के तर जापी ही जय जाप आ देव गा तेज नाद मुरत ताप जंत्र मंत्र ना वही कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर यो विराधिराज राज प्रवीण जज गंध्र देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैस रंगे बिख विराजे सूत्र विवा नाहे गुड़ गौण न भील भीकर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूम काश अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीरा जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत बतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहस पन्न नेत पूरन होत सो सोध हटाय समय सुर विरोध दानो सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महाकव गर्द गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मेल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेवक तेब देव दानो मूढ़ मानो जच न जान जेब भूत भव भवान भूपत आदनाथ नाथ अगन बाय जले थले मैं सर्व ठौर निवास दे गे ने सन्या बे नाद अजीत सर्व गंजन सर्व पंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अभेक चक्र जन वरण जागो जाल पात न भेक रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सबको प्रतपाल दीन बंद दयाल स्वामी आदेव पाल दीन बंद प्रवीण श्री पर सर्व को करतार बरन चेना चक्र जागो चक्र चेना कार जाल पाल न गोत्र गाता रूप रेखना बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भोगो भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरक ब्रह्मनाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भवेक भगवान प्रमाण देव अगंज आदना श्री पद परम पुरक अभंज धर्म के अन करम जे तक कीन तौर पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पाल शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघा डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनक पुष्ट करनक सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आदि व्यापार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंड भूम का जले थले में जप जाप वखंड श्रेष्ठ चार विचार जते जानी है सब विचार आदेव पाल श्री पर दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान

बेर भेव न पावे शिवरुद्रव मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न मद जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व अपार हार हार सके सब नहीं पाई है ते पार नारद आदि वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्छर अपार सो सो थके महासुर पाए उन्ह पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उतरियो मसी बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बितैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है का श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन स्वर्ग नर को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म कवन जो को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा कहो सो सब का सो कह दम को कहा कर हंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंद दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक सो कह कवन को रागी को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कौन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को क्रम है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चिंतन की चेष्टा कहाँ क्षेत्र प्रकाश दोहरा कहाँ नेम संयम कहाँ ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहाँ धर्म की हाँ दोहरा को सूरा सुंदर

सरदार बिबरखन दुष्ट पर करखन पुष्ट पर हरखन दुष्ट मथे जय जय हुसी मै कासुर मर्दर भूम कातल उर्दे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रमाचन निर्दय निराचन धर्म वृते सुरणता चिंती अनल बेंती जो जयंती खड़ग धरे जय जय हुसी मै कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शत्र प्रहारण साध मते साहिति स्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज अतुलंग जय जय हुसी मै कासुर मर्दन भूम कास पताल जलंग चाचर चमकारन छिछुर हारन धूम दुकारन द्रव मथे दाड़वी प्रदंते जोगम जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज पर तेज अष्ट भुजे जय जय हुसी मै कासुर मर्दन भरम विनाशम धर्म धुजे घुंगरु घमंकन शत्र झमंकन फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टाज प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शुद्ध स्नाहे अगमताय एक वृते जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मते कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुरनर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन पाय पताल कासन ले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरकण तुंद तपे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी छात्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद रंगण तच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे चूर भुजे दामनी दमन के हर लंके आदतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम शकर निसोम मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोच विशोचन कौज कसे दामनी प्रका प्रहासे सुसर नासे सुभ्रे सुभासे दुष्ट कसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद अगाद उर्धन घंट का विराज रुणजन बाजय भ्रम भय बाजय सुन सुरंग कोकल सुम लाजय कल्पिक भाजय सुख बराजय मद उरंग दुर्जन दल दजय मंतन जय सबन भजय रोरण जय जय हुसी मै कासुर मर्दन चंड चकरतन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन क्रोध क्रोधन क्रूर वृते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जालपा जयंती सत्र मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मै कासुर वर्धन आज गाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आदनंगी अगाद गते ब्रजराज विहंडन चक्षर दंडन तेज चंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पद उदाहरण दुष्ट निवारण दोख हरे जय जय हुसी मै कासुर मर्दन वैश्व विदन संश्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दोष प्रधर खण बितल तले अष्टायध बाहन बोली बाहन संत बनाहन गुण गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद अगाद वृते दुख दोग प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आदंते जय जय होसी मै कासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकण शास्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुग डुगी दमन के बाग बबन के भुजा फरंग के शुद्ध गते जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आज गाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पदे धारण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पदे धारे मुंड मथे जय जय हुसी मै कासुर मर्दन धूम्र विध्वंस आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकरदन दानव अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म धुजे धूमराज विध्वंसन सोण चुनसन सोम नेपाल निसुम्ब मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनिल अगाद कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसाद जद्दब भूतन भय अनंत कहो जथा मात्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंजय दाता दुरंज दुख दोख रहत जय नेत नेत सब वेद कह

बनाओ सब वार पार जागो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड़ क्यों से क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई पलड़ सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूद वह कह लखाए अनछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंग अद्वय अना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सार जय जात पर नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार जानी ना जय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेद कह नाम तास है कवन जा जय सत्र मित्र ने पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चेन्नई रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल जब जी जिंदगी करत पाल उर्दंग विराज सिद्धंग सरो बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनशिज तेज अनभिजता जल थल मही पंतन दुरजय नेत नेत निर्दिन उछरंत पायो न जाय जय पैर पार दी नान दोग दहता उदार कई कोट अंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुग्या दुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत

बार गनी मन गार पच बसो नग नग नाधिप सर्व समय समको व्रत पार भोगत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दया ने दोखन देखत है पर देत न हारे दात है दुख दोखन को दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड खंड प्रचंड पहारन पूरम प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पद्मापद भेद गते भेद उचारे रोजी ही राज लोक राज रोग रोहन की रोजी न टारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भवेक भवान बनाए देव देव खपे अहम एव न भेव लख्यो भ्रम सिंह भरमाए भेद पुराण कतेब कुरान सेव थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सिंह के श्री पद्मापद पाए आद अनंत अगाध अद्वेक सो भूत भवेक भवान अब है अंत विहीन अनातम अदाग अदोग अछिद्र अछ है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद्मापद ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है देवहीन सनेह सबोतन नेह विरक्त छह है जान को दे दे अजान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्री पद्मापत ले है रोगंते अर्सोगंते जल रोगंते भव भांत बचावे सत्र अनेक चलाता हूं तो निक न लागन पावे राख दे अपनो कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहा का तो सो सो पेट ही के पट बीज बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काल पताल रसातल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सकी नहीं पार प्रवाह को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हरात न आवे नारद से चतुरानंद से रघु नारी से सब हो मिल गायो भेद कदेव ना भेद रखियो सब हार परे हर हात न आयो पाए सके नहीं पार माप सिद्ध सना सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को भी तोज सब जग छायो भेद पुराण कतेब कुरा भेद निरपान सब बजहारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेद अते अनछेद पुकारे रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संग तिहारे आदे नाद अगाद अभेग अभेग जप्यो तिन्हीं कुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वान महाव्रत धारे देश फिर कर भेद तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्याद करे मुकारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छे छत्र के धरैया छत्र धारी के छलैया मां सतरन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया औसान के दिवैया है कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महाकामान हुके मान है ज्ञान हुके ज्ञाता महाबोधता के दाता देव काल हुके काल महाकाल हुके काल है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय धावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना किते बादे आरब के आरबी आराध तेरे नाम है फरागे फरंगी माने कंधारी गुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने नेज काम है मर हटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते है रो के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पापुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मशीन के शीस लियावे तिब्बती ध्याय दो देह को दलत है जिन्हें तो है ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरे दान बान को महेश गंग दान को अभेद कही अत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे ना दीन साध अधीन कही अत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है हाथी की पुकार पहले पाछे पहुंचाता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनी अत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा में कुचार किते कृष्णा अवतार किते राम कही अत है किते सस राशि किते सूरज प्रकाशी किते मुंडे आउदासी जो द्वार दही अत है
केते महादीन केते व्यासे प्रवीण केते कुबेर कुलीन केते जज कही अत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार प्राही ते अपार निराधार लही अत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार कै बखानिया। अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हुके राशि अनासी कह के मानिए। जंत्र हुना जहाँ जागी बाप हुना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कहन मानिए। तेज हु को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए। तेज हु को तर है के राशि को सर है के शुद्धता को घर है के शुद्धता की सार है। कामना की खाने के साधना की शान है के विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप को रूप है कुमद को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विबुद है के क्रोध को अभूत है के अच्छा विनाशी है। काम को किनिंदा खैर खूबी को दिहिंदा गनी काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहिंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को भोगत है के व्रतता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरन प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचे ईमान को दिवया जम जान को कटे का कामना को कर है। तेज को प्रचंड है खंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है। विश्व को भरण के अवधा को हरण के सुख को करण के तेज को प्रकाश है। पाइये न पार पारा बारु को पार जा को की जल विचार सो विचार को निवास है। हिंगला हिमालय गावे हबसी हला विधावे पूर्वी न पार पावे आशा ते अनाश है। देवन को देव महादेव हु के देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन गटे अजम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूमि के भुजैया महा भुजैया महा बाल के। राजन के राजा महा साजू के साजा महा जोग हूँ को जोग धरैया द्रुम छाल के। कामना के गारे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की साथी के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वह छात कैसी छतरा नेर छपा कैसी छप काली जी के कुल के। हंस निशी सिहारू हीरा सी हुसैन आबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदी सी चांदागढ़ की रतिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीता सी सुरंगाबाद नीके सोई अत है। हिमा सी हिमालय राव सी हल्लबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे वो ही अत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रागिर चांदी सी चांदागढ़ जोन जो ही अत है। गंगा सम गंग धार कांसी बिलंदा बार कीरत हरि की उजारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। बखरी गंधारी गोर गखरी कर दे जाचारी पान के हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरा पलाव का रूपा कमाओ सर्व ठार में विराजे जहाँ जहाँ जायत है। पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ कीरत हारी को न पार पाईत है। तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वै अनास आसन अडोल अद्वै अनंत उपमा तो अच्छा सर्व व्यक्त नाद आ जान भाव सर्वा प्रमाद। जत मही बंतन प्रफुल शोभा वसन जत प्रडुल बंतन दुरंत खग मृग महान। जत प्रफुल सुंदर सुजान फुलतंग प्रफुल्ल लहत मोर सिर ढुर जान मन मता चौर। कुदरत कमाल राजक रहीम करुणा निधान कामल करीम। जत बिलो तत प्रसो आ जान बाहो अमितोज मोह। रोसंग ब्रत करुणा निधान जत प्रफुल सुंदर सुजान। बंतन महीम जल तल महान जत प्रसो करुणा निधान। जगमग तेज पूरन प्रता अंबर जमीन जह जपत जाप। सातो आकाश सातो पतार बिथरियो अदृष्ट जय कर्म जार। सातो आकाश सातो पतार
बेत्रेओ आदृष्ट

मल संगत गुण प्रगास, जन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, धृग जीवै धृग जीवास। जन हर जन सतगुर।

मल साध संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ।

प्रजा जिन आप सवारी सेवकण को सेवगुण सख दियो सत्रण को पहल मोह पद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचरिय स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पट पट की जाने जावद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ष करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे

परंत भिन्न भिन्न तुहि तेति तुमरा लखान जाय पसारा कह पित सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेर जसे तज कीनी उतभुज खान बौर रच देनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तपाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर्मो सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा।

बचन बिचार चौपई मन अग्नि स प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हु नह ध्याऊं कान सुन पहचान न तिनसो लव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किं कर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय छुन चुन सत्र हमारे मरिय

उधारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।

सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पत का राखा आप। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फते। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारन जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बौली श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। हम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक डेहरे जी तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहिब जी दमदमा साहिब जी धमतान जी मुकतसर जी पौंटे जी तख्त पटना साहिब हरमंदर दिल्ली महशीशगंज रकाबगंज बाला साहिब बंगला साहिब सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। साहिब जी पंजे साहिब जी कपाल मोचन जी ऋण मोचन जी नानक मत्ते जी तिलगंजी जी नानक जीरा जी शिकार घाट जी हीरा घाट जी माता साहिब देवा जी संगत साहिब जी मालटेकड़ी साहिब जी बसमत नगर दमदमा साहिब जी बंदा घाट जी नगीना घाट जी श्री गंगा जी गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समूगाल से जी को नगारिया निशान साहिबा संजगत तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचंदगढ़ साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज आप जी के हजूर अमृतमयी शब्द बाणी कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना बाणी सच खंड विच प्रवान करना आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे बंद होण गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा।

लेजर रेंज राही गुरु साहिबाना दा इतिहास विखाया जांदा है। सो ठीक 8:15 नूं गुरुद्वारा गोबिंद बाग साहब जाकर गुरु साहिबाना दा इतिहास वेख कर गुरु महाराज दियां खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर्य शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं